With Dharmendra Pradhan offering his resignation, the student protest movement achieved a major victory against the government of Prime Minister Narendra Modi. Iske baad agli headline dekhne, ye BBC hai. India's education minister resigns after weeks of cockroach protests. So basically, toh pe ek bahut important moment hai. Main hum kahi din se isko Pakistan mein bhi dekha ja raha tha. Ye aur baat hai ki Pakistan mein jo fauji media hai, jisko ab hum kehte hain ki Chaudhary media hai. Chaudhary media isme Prime Minister Narendra Modi ko isko aur tarah se dekh raha tha. Because Pakistan mein toh ye hai ki chuki जुलूस निकलने की इजाजत ही नहीं होती. कहीं 15 आदमी इकट्ठे हो जाएं, कहीं 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं, तो उनको लगता है कि शायद हुकूमत गिर जाएगी. वो लोगों के खौफ से उन्होंने इस्लामाबाद में नवंबर 2024 के अंदर कत्लेआम कर दिया. उनको खौफ किया था कि चंद हजार लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक चले जाएंगे, रेड इसे कहते हैं जो जोन है उसके करीब चले जाएंगे, तो हुकूमत गिर जाएगी. जो डिक्टेटोरियल माशरे होते हैं, जो डिक्टेटोरियल पोलिटिकल सिस्टम होते हैं, जहाँ हुकूमतों को हुकूमतें लेजिटिमेसी के बगैर एग्जिस्ट करती हैं, बूट की तलवार की बंदूक की ताकत से कायम जो हुकूमतें होती हैं, वो हमेशा बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, वो बहुत डरपोक होती हैं, वो हमेशा इनसिक्योर होती हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस किस्म की नहीं होती. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर इतनी मॉरल करेज होती है, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें इतनी इलास्टिसिटी होती है कि जब उनके अवाम किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं तो अपने अवाम के लिए उनके अंदर अफेक्शन होती है. वो उन्हें एंगेज करते हैं, उनके मुतालबात को मानते हैं, उन्हें समझते हैं. और ये प्रोसेस, जैसा कि मैंने वीलॉग आफ्टर वीलॉग, हालांकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, हमें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का इतना पता है भी नहीं, लेकिन वीलॉग आफ्टर वीलॉग मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो कचरा किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सारा का सारा हजियान है. असल में एक डेमोक्रेसी एट वर्क है. और मैंने बारह ये कहा, जैसे लोग नाराज भी हो जाते हैं, कि ग्लोबल साउथ में वेस्ट यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें, तो उसके बाहर अगर कहीं पर फंक्शनल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ग्लोबल साउथ में, दुनिया के 200 ममालिक में से, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जहां 1947 के बाद से जो गुज़िश्ता 77 बरस 77 ईयर्स हैं, ये वाहिद रीजन है दुनिया का, ये वाहिद मुल्क है, अब 1.5 मिलियन लोगों का मुल्क है, जहां पर इलेक्शन वक्त पे होते हैं, इलेक्शन के नतीज को माना जाता है. कितनी ही कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, जो इलेक्शन हारते हैं वो इलेक्शन के नतीज को मानते हैं, खामोशी से ट्रांसफर पावर हो जाती है. दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है ही नहीं, रूहे जमीन पे नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बाहर कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं, बन ही नहीं सका, जहां इलेक्शन हो और ट्रांसफर पावर हो जाए इलेक्शन के नतीजे में, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान है. तो ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का एक बहुत बड़ा टेस्ट था, और हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है वो इस टेस्ट से सुरखरू होकर निकली है. थोड़ा सा हम इसकी मजीद डिटेल्स को देख लें कि कॉकरोच जो मूवमेंट है, जो कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है, वो बड़े रेजिस्टेंट थे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे, आगे एक बात हो नहीं सकती, वरना अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक नया एक्ट लाने को तैयार थे, वो तारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करने को तैयार थे, वो इसे कहते हैं हर किस्म की बातचीत करने को तैयार थे. और आपने देखा कि मसलसल जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी दिलजोई करने के लिए यूनियन मिनिस्टर्स उनके पीछे पीछे पीछे पीछे दौड़ रहे थे. और हमने देखा कि इससे पहले जो मीटिंग्स हुई हैं, बेसिकली तौर पे एक या दो या तीन मीटिंग्स हैं, आज एक बड़ी क्रूशियल मीटिंग थी अब से चंद घंटे पहले कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट लीडर्स की यूनियन मिनिस्टर्स के साथ. इससे पहले दो या ढाई दिन जो हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर्स हैं, और हिंदुस्तान का यूनियन मिनिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम होता है, वो एक तरह से हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे यहाँ तो सारे जर्नैल ही होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई और सिविल इंसान शरीफ आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान में, तो सिर्फ जर्नैल ही होते हैं. तो आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की तरह होते हैं, ये ISI वगैरह की तरह के होते हैं, बिकॉज क्योंकि बहुत बड़ी एक रिपब्लिक है, उसमें 28-29 स्टेट्स हैं, 1.5 मिलियन लोग हैं, तो यूनियन मिनिस्टर की बड़ी अहमियत होती. लेकिन यूनियन मिनिस्टर जो है वो स्टूडेंट्स की थोड़ियां पकड़ते फिर रहे थे, और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने आपके दफ्तर नहीं आना, आपके घर में नहीं आना, हमें आपसे मिलना है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मिलना है. और फिर मेरा ख्याल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वहां पर ये मीटिंग्स हो रही थी, और वो इस पर एडमेंट थे कि जब तक जो धर्मेंद्र प्रधान है ये रिजाइन नहीं करेंगे, बात आगे बढ़ेगी नहीं. और यही जो इनकी सूरत हाल थी. अच्छा, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखें थर्सडे की मॉर्निंग में उन्होंने एक ट्वीट किया जो इंग्लिश में भी था और उर्दू में भी था, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम फास्ट ट्रैक स्पीडी कोर्ट्स के जरिए जो लीक्स के मसाइल हैं इसका हम हल करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए. फिर उन्होंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो की जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक एक्ट भी ला सकते हैं. दोबारा उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ से कहना यह था कि नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए. और इसमें यह भी देख रहे हैं कि यह हुआ कब सब कुछ शुरू. मई 2026 में जब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुए जो कई मिलियन स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं,
ان میں لیگز کے بعد حکومت نے ایک ٹپیکل

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए, पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।

0: टीवी जो है वो 14 अगस्त को एक प्रोग्राम कर रही है, अब प्रोग्रामों की बात चल निकली है, तो उसमें जनाब पाकिस्तान सोसाइटी 14 अगस्त को स्कॉल ऑन मीरापुर नंबर 9 बवक्त 4 बजे जो है वो ये प्रोग्राम होगा।
1: अच्छा, तो वो उसमें सब वो ओपन है सबके लिए या सिर्फ सोसाइटी के मेंबरान के
0: लिए? ये सबके लिए है, ख्वातीन हजरात के ओपन प्रोग्राम है ये।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए हम एम्बेसी और पाकिस्तान सोसाइटी और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान यौम आज़ादी मनाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है।
0: बशीर साहब, एक और था मेरे जहन में, अब उसका एग्जैक्ट 1 अगस्त को जो है वो मांगो फेस्टिवल जो है वो दोबारा किया जा रहा है। मैं अभी देखता हूँ अगर मुझे उसका एड्रेस वगैरह जो है वो मिल जाए।
1: मेरा ये वहीं पे है बेलारूप में, सॉरी बेलारूप कह रहा हूँ, अल्बसलून में, जहाँ पे खुर्रम शेख खुर्रम साहब ने कराया था, उन्हीं ने कराया दोबारा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ रजा भाई आपसे। अभी देखिए यहाँ पे अगस्त में हिंदुस्तानी एम्बेसी भी करा रही है, लेकिन वो मैंगो नहीं मंगवा रहे, वो इंडिया की काफ़ी सनती जो मसनूआत हैं उसकी एग्जीबिशन करेंगे। हमारे यहाँ बस यही है, मैंगो और कपड़े, उसके अलावा तीसरी चीज़ हम वहाँ से पाकिस्तान से मंगवाते नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान से और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं, हैंडीक्राफ्ट भी आ सकते हैं और चीज़ें भी आ सकती हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लोग उसकी तरफ क्यों नहीं सोचते।
0: ये बशीर साहब, ये हमारे जो एम्बेसडर साहब आए थे यहाँ, गर्देजी साहब,
1: उन्होंने कराया था
0: ये मांगों का जो है वो, उन्होंने कुछ रबते यहाँ लोगों से करवाए और फिर उसके बाद जो है वो एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन हकीकत में जिस तरह आप कह रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो 14 अगस्त को प्रोग्राम करती है, अब तो वीकेंड में भी आते हैं प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो है सिर्फ ये घंटे दो का प्रोग्राम के बजाय उसको वसी करके।
1: लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एम्बेसी चाहे
0: जी
1: तो वो इंडियन एम्बेसी की तरह एक इंडियन पाकिस्तानी फेस्टिवल कराएं जिसमें मैंगो भी मंगवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में छोटी छोटी मसनूआत जो हैं जो इस मार्केट के लिए भी अच्छी होंगी उसकी भी नुमाइश कराएं।
0: भाई साहब, वही जो आपकी तरजीहात पे है, मुझे याद है कि कुछ साल पहले, अब तो 14 जो कोपेनहेगन मेला था वो अब काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जब लास्ट तकरीब हुई तो वो पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने नाम पे जो है उसको कर लिया था कि जी हमने उनके साथ मिल के किया, जबकि पाकिस्तान एम्बेसी का उस 14 जो कोपेनहेगन मेला है उसके साथ उनका कोई तल्लक नहीं था। तो ये है कि हम जो है वो सस्ती शोहरत लेने के लिए जो है वो काम कर लेते हैं। लेकिन बाशी साहब, 1 अगस्त का जो मैं जिक्र कर रहा था, जो मांगो शेख समर फेस्टिवल हो रहा है, वो जनाब एल्बर्टस्टोन में होगा और ये इंग्लैंड स्वाय नंबर 7 में ये पाक डन एकेडमी जो है वो इसको अरेंज कर रही है, जिसके जो है वो शेख खुर्रम साहब करता धरता है।
1: अच्छा, मैंगो के तवस्से से एक और भी बात बताऊं, पाकिस्तान में अभी बड़े पैमाने पे ओलिव, अवोकेडो और दूसरी ऐसी चीज़ें जो इस मार्केट में इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके बारे में भी हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो यहाँ पे हैं उनको सोचना चाहिए कि मैंगो तो ठीक है वो अपने लोग भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल तौर पे यहाँ की जो सुपर मार्केट्स हैं उसमें इन दूसरे, और कीनू एक ऐसा फल है जो कि मशरक़ वस्ता में ज़रूर जाता है लेकिन यूरोप में नहीं मंगवाया जाता उसको, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, उससे पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पे जो मार्केट सुपर मार्केट है उसमें भी आप अपनी चीज़ें ला सकते हैं।
0: बहुत शुक्रिया बाशी साहब। और सामीन और नाज़रीन, ये था बाशी के संग प्रोग्राम, और अगले थोड़ी देर बाद जो है हम बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें जनाब मैंने बाशी कुरैशी साहब को तुमसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा वक्त दे ताकि हम जो है वो मुख्तलिफ जो बैनुल अक्वामी ख़बरें हैं उन पे हम जो है वो थोड़ा सा तबसरा करें। तो सामीन और नाज़रीन, चंद ही लम्हों के बाद जो है आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन।

0: लोग हैं जो डेनमार्क में भी नहीं थे। कभी कल जो है एक प्रोग्राम था एम्बेसी के सामने पीटीआई का,
1: हाँ जी
0: वहाँ पे जो लोग बोले वो भी कहते हैं हम बीमार थे, हम नहीं आ सके, हम मुल्क से सफ़र में थे। तो भाई साहब अभी भी जो है लोग फ़ोन करते हैं और ताज़ियत के लिए आते हैं, और जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं यकीन करें लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बल्कि ये भी क्योंकि वो बाबा जी जो है ना, वो हम जब
1: सबके लिए
0: ये
1: है।
0: सब जब जो हो रहा था, तो मैंने अपने कुछ बहन भाइयों से कहा और बच्चों से कहा कि देखें बाबा जी, हमारे तो वाले साहब थे, दादा थे, नाना थे, जो भी थे, लेकिन उनका एक कम्युनिटी के साथ भी तल्लक है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है कि लोगों को भी हक दें कि वो अगर उनको देखना चाहते हैं, उनको हमसे मिलना चाहते हैं, तो उनको, यानी हम ये ना कहें कि जी सिर्फ हमारे हैं, क्योंकि बाबा जी जो है ना वो सबके थे।
1: बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। आपने उनके मस्जिद में जब उनकी नमाज़े जनाज़ा के अगले दिन आपने वहाँ पे जो तकरीर की है ना, नहीं बल्कि नमाज़े जनाज़ा वाले दिन जब आपने तकरीर की, जब मैं सुन रहा था वहाँ पे एक आपने एक बड़ी ख़ास बात की, जिसका मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारे कोई बुज़ुर्ग लोग या कोई भी अगर अस्पताल में होते हैं और वो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो हमारे लोग कई दफ़ा बग़ैर बताए टाइम के वो वहाँ पे चले जाते हैं, और एक नहीं जाता, बहुत से लोग जाते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अस्पताल के कुछ टाइमिंग्स होते हैं और वहाँ पे जो है लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, जाके मजाज पूछ सके, लेकिन उसके लिए फैमिली से टेलीफोन पे बात करके फिर जाया जाए। तो ये आपने बड़ा अच्छी वहाँ पे
0: बहुत
1: बात की
0: शुक्रिया।
1: थी।
0: और इसमें ज़रा मैं डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बाशी साहब जब हम इस प्रोसेस से गुज़र रहे थे, तो देखें जो मरीज़ होता है उसको ज़्यादातर डिपेंड है कि आपको क्या है, ठीक है, और आपकी तबीयत जो है वो किस तरह की है। एक आदमी की अगर बाजू टूटी है, ठीक है, वो लेटे हुए हैं, वो बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, लेकिन उनको भी आराम की जो है वो ज़रूरत
1: बिल्कुल
0: होती
1: बिल्कुल
0: है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: जितना आप आराम करेंगे उतनी जल्दी आप जो है वो सेहतयाब होंगे। तो लेकिन एक आदमी को जो मुख्तलिफ यानी तरीके से, जो अगर आप बीमार हैं तो आप खुद भी, क्योंकि एक अंकल थे, उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं रज़ा बेटा मैं आना चाहता हूं। तो मैंने कहा बाबा जी की तबीयत नहीं है ठीक, तो आप नहीं आए। तो बाबा जी मेरे पास ही थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अब्बा जी ये अंकल हैं, आना चाहते हैं। तो उन्हें कहें कि मैं नहीं मिलना चाहता ना अभी। तो फिर वो इन्होंने इंसिस्ट किया, कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आप सिर्फ बता दें कि मैंने आना कहाँ है। तो वो फिर हमने उनको इनकार नहीं किया, तो वो आए। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि हमें जो है ना, क्योंकि अगर मरीज़ ख़ुद कह रहा है कि मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत नहीं है इस वक्त किसी से मिलने की, देन जस्ट लीव हिम। यानी हम सब मोहब्बत करते हैं अपने प्यारों से, लेकिन अगर हमारे उस प्यार की वजह से उनकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो
1: वो
0: या खुदा
1: ठीक
0: ना
1: नहीं
0: खासा
1: है।
0: जान चली जाए, तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। तो हमें ये थोड़ा सा जो है, लेकिन बाशी साहब इस पर जो हमें ना एक बड़े प्रोग्राम ख़ास करेंगे, और मैंने बल्कि हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनसे भी कहा कि हमारी किताब और सुन्नत जो है वो क्या कहती है, कि जब आप बीमार का पता करने जाएं, फिर हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जी आप बताएं कि आपको बीमारी क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ।
1: और
0: यार
1: डिटेल
0: कुछ
1: में
0: कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पर्सनल रखना चाहते हैं, वो इस पर
1: बिल्कुल
0: बात नहीं करना
1: बिल्कुल।
0: चाहते।
1: अच्छा रजा भाई, अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे, उससे पहले बाबा जी की रूह के लिए जो है ना आप दुआ कर दें प्लीज़।
0: जी तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश है कि आप एक मरतबा सूरत अल-फातिहा और 3 मरतबा कुलो शरीफ पढ़ के बाबा जी की रूह के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उन्होंने वो हमारे लिए भी जो है वो सदका जारिया बने, हम उनके लिए जो है वो सदका जारिया बने। जो उन्होंने हमें सबक देते रहे, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें करके दिखाया, हमें भी अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें, ख़ास तौर पे हम जो उनकी औलाद हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हम सब जो है उनके लिए एक फ़ख्र जो है वो बायस बने। लोग जो है जब भी बाबा जी का जिक्र हो तो वो हमें भी जो है अच्छे अल्फाज में जो है वो याद रखें।
1: आमीन।
0: जी तो सामीन और नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और चंद ही लम्हों के बाद जनाब बाशी कुरैशी अपना प्रोग्राम बाशी के संग लेके हाज़िर होंगे जनाब नसर मलिक साहब के साथ। आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम

0: पर लगे रहो तुम्हें कोई कुछ नहीं खाएगा। फिर आपको याद होगा कि एक मरतबा उन्होंने आपकी मौजूदगी में मुझे खास मौका दिया कि कुछ तकरीबन 15-20 मिनट की खबरें जो थी वो मैंने बराह रास्त बैठ कर वहां से नशर की।
1: बिल्कुल जी, जी, जी।
0: और बाबा जी की एक और शख्सियत आपको बताऊं
1: जी,
0: आपने जिक्र किया जिस साने से मैं गुजर रहा हूँ, जब भी रजा भाई से बात होती थी तो चूंकि घर में बात हो रही होती थी तो मैं कहता था रजा भाई बात सुने या रजा गल सुने, तो मेरी आइडिया जो थी वो कहती थी ये रजा भाई है, मैंने कहा हाँ, तो वो कहती थी इनसे ये कहो कि बाबा जी से कहो उसके कहो कि बाबा जी से कहे कि मेरे लिए दुआ कर, कोई बात अच्छी थी होती थी कि जब भी रजा ने फोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि बाबा जी से मेरे लिए दुआ करवाओ, और वो करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल करते।
0: इस मेहरबानी से तो मैं आपको प्रकट आऊँ, सिर्फ यही नहीं जैसा शौकत अर्ज कर बता रहे थे यहाँ अपने बाबा जी के साथ मुलाकातों के हवाले से, बाबा जी ने हमेशा प्यार बांटा।
1: बिल्कुल।
0: और यकीन कीजिए कि वो ये नहीं कि वो अपने दीनी मसलक पर या अपनी दीनी रवायात पर कोई लच्चों कबूल कर लेते थे, बिल्कुल नहीं। वो अपने मसलक में अपने दीन पर अपने नुक्ता नजर पर हमेशा बरकरार रहते थे, लेकिन इस तरह से कि दूसरे को उनकी शिद्दत पसंदी का एहसास ना हो और दूसरे को बात करने का मौका मिले।
1: जी।
0: अच्छा, ऐसी बड़ी बात है कि आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बाशी कुरैशी के मुंह पर कोई उसके खिलाफ बोल रहा हो और वो चुपके से सुन रहा हो, मुस्कुरा रहा हो और आखिर में कहे भाई आपने जो बातें की उनमें ये दुरुस्त है और ये गलत है, ये पहलू उनमें बहुत नुमाया था। मेरे साथ कितनी मतलब उन्होंने मुझे कहा, एक मतलब बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि वो अपने कंधे पर एक पटका रखते थे।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: सफेद
1: जी जी जी,
0: मलमल का, और उसको माया लगी होती
1: जी,
0: जो कि यहाँ जनमत में बहुत कम है
1: जी।
0: इस नस्ल के लोग तो अब जा रहे हैं, हमारे पास तो चंद ही रह गए हैं। तो मैंने एक दिन कहा बाबा जी यह पटका मैंने दे दो, तो मैं उन्हें बाबा जी कहता
1: जी जी, हम सब उनको बाबा जी कहते हैं जी जी।
0: तो कहने लगे जिस दिन मेरे नाल मसीती चल तो मैं तो उठे जाके उन्हें दे देना, तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ना मैं मसीती जाना है ना तो सामने मुझे देना है। हंस के मुझे जफा डाल के मुझे कहते हैं, कहते हैं ये कुछ तुम पर मुनसर है कि तुम मस्जिद जाओ और ये लो या ना लो, लेकिन मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए मौजूद है, आओ मस्जिद आओ। मैंने कहा अच्छा किसी दिन आऊंगा, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मदनी मस्जिद में जाने का मौका दिया, लेकिन वो भी किस दिन जब उनके लिए दुआ मकसद करने के लिए बाशी भाई वो लोग आए हुए थे जो 1973 के बाद मैंने शायद कभी
1: नहीं देखे। वेरी ट्रू, बिल्कुल हाँ।
0: और एक दूसरे को हम देख कर कह रहे हैं तुम हो ही हो।
1: हाँ बिल्कुल, पहचाने भी जा रहा था कई लोग।
0: मुझसे आके एक साहब ने पूछा कि तुम हो ही नुसरत साहब, मैंने कहा जी और थोड़ा इसमें मुबारक की। तो ये उनका तो खलूस था, ये उनकी वो मकनातीसी कुवत थी कि लोग उनके जनाजे में और उनके लिए दुआ मकसद में किस तरह हाजिर हो गए।
1: अच्छा, उनके जनाजे में एक चीज़ ख़ास जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो कि मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम और मुख्तलिफ मसाजिद के इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे आए हुए थे, सियासी पार्टियों के लोग थे वहाँ पे, एनजीओज के लोग थे, हर वो शख्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में हुज हु आए हुए थे वहाँ पे।
0: ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम मसाजिद के कई मसाजिद के इमाम साहबान और उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग जो थे वो आए हुए थे, ये बाबा की उस फरागदिली का नतीजा है जो वो हर मसल के लोगों के साथ रखते
1: थे।
0: किसी किस्म की मसल की तकरीब तो थी नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो मुसलमान थे जो रसूल अकरम के जमाने में पहुंचे थे, मसल तो कोई चीज ही नहीं है, अपने दीन पर कायम रहो।
1: अच्छा, आपने बाबा जी के पटके की बात की थी, मैं भी आपको एक ऐसी ही बात बताता हूँ। बाबा जी बहुत खूबसूरत वास्केट पहना करते थे, आपको याद होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मुझे भी वास्केट पसंद थी बहुत, लेकिन मैं क्या कहूँ, तो मैंने एक दिन मजाक में यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा बाबा जी आपकी वास्केट बड़ी खूबसूरत है, उन्होंने पता क्या, उन्होंने उतार के मुझे फौरन दे दिया।
2: वाह जी वाह जी।